जाउला वृद्ध पर्खिनेलाई पो हुँदो रहेछ नि ए प्रकृति ए देवी देवता बचाई राखिदेऊ है।

सामाजिक रूपांतरण सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।